FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 16 मई 2026 समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी ये प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए

0: the property that we own Moscow, free, open और safe बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बाहर हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उनके प्रसारण समय के बारे में। अभी 6:10 पर श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। विषय रहेगा प्रयास हमें करना चाहिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। वंदना आप सुनेंगे 6:15 पर। 6:45 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे 7:20 पर। उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 377 आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम नमस्कार शुरू के लिए समय है 7:30 का। 8:00 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम आप सुनेंगे 8:30 पर।

9 बजे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 पर आप सुनेंगे देशकान कार्यक्रम साहित्य सुगंध। आप सुनेंगे 9:15।

कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, समाज में बालिकाओं के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वार्ताकार रहेंगी दीपिका शर्मा। कार्यक्रम दिल से दिल तक फेसबुक कमेंट पर आधारित फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम होगा 9:30 पर। 10:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम होंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संकेत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। 1:00 हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे 1:05।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार होंगे। 2:30 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ आरंभ होगी हमारी आज की दूसरी सभा। शाम 6 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। देशभक्ति फिल्मी गीत होंगे 6:10 पर। संस्कृत में समाचारों के

साथ बजकर 30 मिनट पर श्रोता सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से होगी 8:45 पर। 9 बजे आप सुनेंगे News@9। राजस्थानी लोक संगीत आप सुनेंगे 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती हमारे दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे होगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर श्रोता सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

सभी श्रोताओं को रेडियो साथी अंकिता का नमस्कार। आप सुन रहे हैं चिंतन। आज का हमारा विषय है, कोशिश हमें करनी चाहिए कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाए। श्रोताओं, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास में बने हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश ये करें कि चाहे शुरुआत और बीच का सफर कैसा भी रहे, अंत में सब कुछ ठीक हो जाए, ये प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारी अंतिम सीढ़ी ये तय करती है कि हमने कितने पायदान पीछे छोड़े हैं। अगर हम अंत में सब कुछ ठीक नहीं कर पाते हैं तो हमारी सभी कोशिशें नजरअंदाज हो जाएंगी। इसीलिए जब भी हम किसी भी काम में किसी भी स्तर पर प्रयास करते हैं तो हमारा प्रयास पूर्ण होना चाहिए, साथ ही कोशिश ये करनी चाहिए, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो किसी मुकाम पर हमें पहुंचना हो या हम अपने जीवन के किसी पड़ाव में फंस गए हो, हमें लग रहा हो कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, कोशिश हमें तुरंत करनी है, तुरंत इसके परिणामों की ओर जाना है। लेकिन अगर सफर मुश्किल है, हमारे जीवन की

शक्ति हमें कमजोर होती नजर आ रही है। लग रहा है कि पड़ाव मुश्किल है, एक के बाद एक स्टेप चढ़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप परिस्थिति के अनुसार अपने कार्य को करें, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारा अंतिम प्रयास ऐसा हो कि हम सफलता भी प्राप्त करें और अंतिम प्रयास में सब कुछ ठीक हो जाए, इसका प्रयास हम करते रहें। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करने से हम अंतिम पायदान को प्राप्त करेंगे और उसमें कुशलता से सब कुछ ठीक कर पाएंगे। मुश्किल समय में धैर्य और धर्म, सकारात्मकता बनाए रखने से सही समाधान खोजने में हमें मदद मिलती है। हम अगर अपनी धैर्य को और अपने धर्म को, धर्म से यहाँ तात्पर्य है अपनी ईमानदारी से, अपने कर्म से, तो हम अगर उन पे चल रहे हैं तो अंतिम पायदान पर पहुंचते पहुंचते हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है जो आने वाले समय में हमें बेहतर और मजबूत बनने में बहुत मदद करती है। परिस्थितियां जब हमारे सामने होती है उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जहां तक हमें पहुंचना है वहां पहुंचने में वो परिस्थितियां हमारा बहुत साथ देती हैं। व्यक्ति एक ऐसा अपनी सोच में धारणा बनाकर रहता है कि जितना जरूरी हो उतना ही करता है, जब जरूरत नहीं होती है तो वो अपने आप में स्थिरता रख कर बैठ जाता है, लेकिन अगर जरूरत है तो वो दौड़ लगाता है, भागता है, अपनी कोशिशें करता है। इसलिए जरूरत का होना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हम हमारे बुजुर्गों से, घर के वरिष्ठ लोगों से, अनुभवी लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमें ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया होता है, इतने सालों का अनुभव, ज्ञान, वो हम कुछ क्षणों में प्राप्त करके, ग्रहण करके अपने जीवन में सोचिए कितना कुछ कितने कम समय में, कितनी कम उम्र में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी सोच, ऐसे विचार रखते हुए उनके पास हमें बैठना चाहिए, उनके जीवन के अनुभव को हमें लेना चाहिए, जिसमें हम प्राप्त करेंगे कि अंतिम पड़ाव पर अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, अंतिम समय में अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो जितनी भी परिस्थितियां आई, जितनी भी परेशानियां आई, उन सब का परिणाम सुखद होता है। तो ये था चिंतन।

अभी आप सुन रहे थे वंदना। ये आकाशवाणी का शुरू केंद्र है, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:45 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बच्चा बच्चा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
1: सिलसिला फिल्म का गीत शोध आप सुनेंगे लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में।

रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अभी आप सुन रहे थे गीत बहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे उत्तरकांड से संकलित एपिसोड संख्या 377। कलाकार है ए हरिहरन, संगीत दिया है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। समय 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चुरू।

सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार चोरू में। कार्यक्रम में मैं बनी हूं आपके साथ रेडियो साथी अंकिता। सभी श्रोताओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गीतों के साथ हम बने रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। इस प्यारे गीत से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।

श्रोताओं, प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम कुछ और बातें ऐसे करेंगे जिनसे हमारे जीवन में हम अगर इनकी जानकारी रखते हैं तो हमें मदद मिलती है अपने जीवन को अच्छे से और सुरक्षित बिताने में। श्रोताओं, हम अपने जीवन में हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। घर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम कोई गेम खेल रहे हो या किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन कर रहे हो या हो सकता है कोई अन्य कार्य कर रहे हो, इंटरनेट हम सभी यूज कर रहे हैं, तो उतना ही जरूरी है इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जानना। श्रोताओं, इंटरनेट सुरक्षा आज के डिजिटल युग में हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये व्यक्तिगत डेटा की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर हमलों जैसे खतरों में अगर हम पड़ जाते हैं तो हमारी बचाव और हमारी सुरक्षा करने में हमें मदद करता है। ऑनलाइन सुरक्षित हमारा जो पेमेंट है या किसी भी प्रकार से हमारे डेटा है उनको सुरक्षित रखने के लिए सभी को मजबूत पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का उपयोग हमें करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और भी ऐसी बातें हैं जिनको हम अगर जानते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी की अगर बात करें तो ये हमारी जो संवेदनशील तस्वीरें, संदेशों और निजी विवरणों को हैकर से बचाती है। ऑनलाइन

बैंकिंग और शॉपिंग के दौरान सुरक्षित रहने में हमारी मदद करती है। बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड का डेटा चोरी होने से बचाता है। अगर हम इसकी जानकारी रखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों और वायरस और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाता है और बच्चों को ऑनलाइन अनुचित सामग्री और उत्पीड़न से सुरक्षित रखने में मदद करता है। आज हम विभिन्न प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं जिनमें कुछ चीजें कुछ लिंक ऐसे होते हैं जो हमें नहीं क्लिक करने होते हैं। अगर हम इसकी जानकारी रखते हैं तो हम उन पर क्लिक नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो जो अनावश्यक जो हम नहीं चाहते हैं उन कार्यों से हम बच सकते हैं। और भी छोटी छोटी बातें, हमेशा मजबूत जो अद्वितीय पासवर्ड हो हमारा उसे हम चूज करें जिससे आसानी से उसे तोड़ा ना जा सके। अपने डिवाइस चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, इन्हें हमेशा अपडेट एंटीवायरस रखना होगा। सार्वजनिक या असुरक्षित वाईफाई का इस्तेमाल करते समय हमें सतर्क रहना होगा। अनजान लोगों के साथ अपनी निजी जानकारी या ओटीपी कभी साझा नहीं करनी है। श्रोताओं, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से जुड़े नियमों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी अगर हमें बहुत प्राप्त करनी है तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की वेबसाइट पर जाकर सुरक्षा सुझाव पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी ऑनलाइन गोपनीयता को मजबूत करने के लिए अवास्ट गाइड की मदद से प्रभावी टूल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: सदा प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। प्रकृति हमारे कितने आसपास और कितनी अंदर समाई हुई है, इसे हम महसूस कर सकते हैं। श्रोताओं, प्रकृति हमें हमारा जीवन न केवल श्वासों के रूप में देती है, बल्कि एक सुखद और आरामदायक, साथ ही स्वस्थ ऐसा जीवन जिसे हम हमेशा अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को संवारते हुए, निखारते हुए बढ़ सके, इस प्रकार का वातावरण हमें प्रदान करती है। प्रकृति हमारा घर है और जीवनदायिनी है। हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर है, इसलिए हमें इसे कुछ वापस लौटाना एक विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमें इतना कुछ देती है और अगर हम इसे वापस कुछ दे भी रहे हैं तो वो भी हमारे ही लिए होगा, ये हमें समझना होगा। संतुलित जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे छोटे छोटे कदमों से शुरू हुआ जानना चाहिए। हम प्रकृति को वापस देने और उसके संरक्षण में कैसे योगदान दे सकते हैं, अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो हम अच्छी प्रकार से इस बात को भी समझ लेंगे कि हम अगर इसे कुछ दे रहे हैं तो भी हमारे लिए है। जैसे अगर प्रकृति हमें पेड़ पौधे उपलब्ध करवा रही है या पेड़ पौधों के माध्यम से हमें जो कुछ दे रही है, तो अगर हम भी आसपास खाली जगहों पर देशी पौधे लगाएं, पेड़ हवा को साफ करते हैं, कार्बन सोखते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाते हैं, और ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लंबी आयु के लिए जरूरी है, ये हमें जानना चाहिए। जल संरक्षण की बात करें तो पानी की बर्बादी हमें रोकनी होगी। वर्षा का जल संचयन हमें अपनाना होगा। नहाते समय, बर्तन साफ करते समय हमें बुद्धिमत्ता के साथ पानी का उपयोग करना होगा। कचरा जो हम आसपास फेंक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इसे हमें रोकना होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा, कपड़े के थैलों का उपयोग करना होगा और कचरे को सूखा और गीला अलग अलग करके रिसाइकल करने में मदद करनी होगी। गैर नवीनीकरण ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए और सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक करने के लिए हमें इसके बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब कमरे के बाहर जाएं और लाइट और पंखे अगर हम ऑन छोड़ करके जा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, इसे हमें याद करके बंद करना चाहिए। प्रकृति के साथ जितना ज्यादा हम समय बिताते हैं उतना हम सुखद महसूस करते हैं। पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में अगर

हम जानकारी रखते हैं तो इनके महत्व इनकी उपयोगिता का ज्ञान हमें स्वतः हो जाता है। अपने स्थानीय स्तर पर पर्यावरण स्वच्छता अभियानों और सफाई कार्यक्रमों में स्वेच्छा से हमें शामिल होकर अपना योगदान देना चाहिए। प्रकृति को भावनात्मक उपहारों की नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान की जरूरत है। हमारी छोटी सी आदत पृथ्वी को हरा भरा और स्वस्थ रखने में बड़ा बदलाव ला सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
2: कार्यक्रम नमस्कार चूरू में आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। क्या है जल जीवन मिशन, इसकी महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई। अब इस मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसे जल जीवन मिशन 2.0 कहा जाता है, जिस पर लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। ये योजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। अनुपात की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य के अनुपात में सामान्य राज्यों में 50:50 की हिस्सेदारी और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 की हिस्सेदारी है। केंद्र शासित प्रदेशों में 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पानी की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी दी जाती है, जिससे पानी के मुख्य स्रोत से लेकर घर के नल तक की पूरी आपूर्ति पर नजर रखा जा सकता है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर तक नल से साफ और पर्याप्त पानी का बंदोबस्त किया जा सकता है या किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी उपलब्ध कराना, गांवों के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल की सुविधा सुनिश्चित कराना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर ये शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30,00,000 मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गयी। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड पहुँचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी श्रोताओं का स्वागत है सुगम संगीत के कार्यक्रम सुर संगम में। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायी हुई गजलें।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोता सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें।

आप सुन रहे थे सुरसंग का FM 100.7 MHz पर, ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई

0: जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 383,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना

0: 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं। समय 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है देश का अंत।

0: आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सुगंध। कार्यक्रम में आप सुनेंगे हिंदी वार्ता। विषय है समाज में बालिकाओं के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वार्ताकार है दीपिका शर्मा।
1: इस शिक्षित समाज में बालक और बालिकाओं के बीच कैसे भेदभाव किया जाता है, कैसे दकियानूसी मानसिकता के प्रत्यक्ष उदाहरण हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, इससे मन बड़ा ही बेचैन और व्याकुल हो उठता है। वैसे तो हम एक तरफ चांद पर पहुंच गए, दूसरी ओर हम लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव के जीवंत उदाहरण देख रहे हैं। बड़ी ही विचित्र और डराने वाली स्थिति है। आमतौर पर कहा जाता है कि इस भेदभाव की वजह अशिक्षा और लोगों में जागरूकता की कमी है, पर मेरा मानना है कि इस भेदभाव की सिर्फ यही वजह नहीं है। कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी ये भेदभाव करते हैं। दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां शिक्षित परिवारों में भी देखने को मिलती हैं। पहले हम लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव, इस भेदभाव के शब्द के अर्थ को भली भांति समझें। भेदभाव वह होता है जब किसी व्यक्ति से उसकी पहचान के आधार पर गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है या दूसरों के बीच उसे मौके नहीं दिए जाते। नारी नर में भेद क्यों, दोनों एक समान, नारी नर की प्रेरणा नैतिकता की खान। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तभी आशीर्वाद स्वरूप उसे पुत्र की प्राप्ति हो ऐसा बोलकर हम अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। बच्चे के जन्म के साथ ही यह लड़का है यह लड़की है अलग अलग मत हो जाते हैं। लोगों की मानसिकता है कि लड़के परंपरागत रूप से आय कमाएंगे और समाज में यह मानसिकता बनती है कि बुढ़ापे के दौरान लड़के उनकी अधिक अच्छे से देखभाल करेंगे। वंश वृद्धि भी लड़कों से ही होगी क्योंकि लड़कियां, या दूसरे शब्दों में कहें तो बेटियां, तो पराए घर चली जाएंगी। इस तरह यह मानसिकता समाज को दो भागों में बांट रही है। लड़की की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुझे एक कविता की लाइनें याद आ रही हैं, जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता हमने खूब गाई और सुनी है। इन लाइनों पर मैं व्याख्या करना चाहूंगी कि जब पुरुष सैनिकों ने दुश्मनों के आगे हथियार डाल दिए, तब जब सभी मर्दों के बीच वह अकेली जनानी बची, तब वह एक जनानी उन मर्दों के साथ लड़ी। पुरुष ही क्यों प्रतीक है पुरुषत्व का। देखिए अपने घरों में भी क्या पिता से कम भूमिका है हमारी माँ की। पुरुष कमाता है, गृहिणी भी तो घर चलाती है। पुरुष को तो सप्ताह में एक में या महीने में एक दो छुट्टियां मिल भी जाती हैं, पर क्या कभी माँ को भी घर के काम से छुट्टी मिलती है। इसलिए बालिका या महिला को काम से छुट्टी नहीं मिलती, भला क्यों? इस क्यों पर विचार होना चाहिए। किस किताब या ग्रंथ में ये लिखा है कि घर का काम सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। हालांकि समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आज भी कुछ घरों में इस तरह की माहौल देखने को मिलता है, जबकि महिला आज घर की देहरी को पार करके पुरुषों के समान कार्य कर धन कमा रही है। दरअसल ये सारा चक्रव्यूह हमारी अपनी सोच का है, जो बालक और बालिकाओं के बीच भेदभाव का बीज बचपन में ही बो देते हैं। पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं, समान रूप से धन कमाते हैं, पर घर आकर पत्नी ही चाय बनाए, पति क्यों नहीं? इस क्यों पर भी विचार होना चाहिए। यूं तो हम सब मानते हैं कि पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, और जब ये समान रूप से गति करेंगे तभी जीवन खुशहाल बनेगा। पर क्या वाकई ये समानता है? आज हमें अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा। आज देश की राष्ट्रपति एक महिला हैं। सारा देश उन्हें झुककर सलाम करता है। कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी और भी न जाने कितनी अनगणित महिलाएं हैं जिन्होंने अपने साहस और शक्ति का सिक्का इस पुरुष प्रधान समाज से मनवाया है। जीवन रूपी रथ के दोनों पहिए जब समान रूप से गति करेंगे तभी जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा। हम भारतीयों की तो यह परंपरा रही है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर भला ऐसे परंपरा वाले देश में बालक और बालिकाओं के बीच भेदभाव क्यों? हम क्यों भूल जाते हैं कि नारी जननी है, सृष्टि की रचियता है। हम तो पार्वती परमेश्वर, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण वाले देश की संतान हैं। अपने जीवन के इस मूल मंत्र को हम भला कैसे भुला सकते हैं? अब एक उदाहरण से ही हम इस बात को समझें कि जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो आशीर्वाद स्वरूप अक्सर कहा जाता है कि तेरे बेटो होवे। पर अब ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर बेटे ही बेटे जन्म लेंगे तो उन्हें जन्म देने वाली माँ कहाँ से आएंगी? मेरे ख्याल से उन्हें स्वस्थ बालक हो ऐसा आशीर्वाद हमें देना चाहिए, चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी। सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धन वर्षा लक्ष्मी और भी बहुत सी योजनाएं। पर अकेली सरकार भला क्या कर सकेगी? वह तो सिर्फ कानून बना सकती है। सरकार के बनाए कानून की बात ना करते हुए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम सब एक एक मिलकर इस बात को माने और समझें कि लिंग आधार पर हमारी जो धारणाएं हैं हम उसे मन से बदलें, क्योंकि समाज में तो उसकी उन्नति और समृद्धि के लिए सभी की समान रूप से साझेदारी है। बालिकाओं के प्रति समाज में जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है मैं उस पर बात कर रही हूँ। एक महिला मजदूर को पुरुष मजदूर से कम मजदूरी मिलती है, जबकि सरकार ने मजदूरी के जो नियम है उसमें तो दोनों को समानता का अधिकार दिया है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। घर में ही देख लो, सभी घरों में तो नहीं लेकिन कुछ घरों में पुरुष जब काम से थककर घर वापस शाम को घर आता है तो उसे लगता है कि घर में महिलाएं सारा दिन आराम करती हैं। कई बार तो ये बात भी सुनने को मिलती है कि तुम घर में सारा दिन करती ही क्या हो। वही महिला यदि एक दिन भी सुबह से शाम तक किसी वजह से घर से बाहर रहे या बीमार हो जाए या किसी और कारणवश घर का काम ना कर सके तो पुरुष प्रधान समाज को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में प्रधान है कौन। पर कहते हैं ना कि जैसे खुशबू को, हवा को, पानी को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में भी प्रतिभाएं हार नहीं मानती हैं। हम देखते हैं कि आज की नारी ने सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया है और सफलता के बीज तो बालिकाओं में बाल्यावस्था में ही बो दिए जाते हैं। समाज को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को स्वस्थ और विस्तृत करना होगा। विशेष रूप से हम महिलाओं को ही महिला का संबल, आधार और सहारा बनना होगा। हमारी बच्चियां भला क्या कुछ नहीं कर सकती। हमें चाहिए कि हम सब उनका सही दिशा और दशा में उत्साह वर्धन करें, मार्गदर्शन करें, तभी हम सब एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश का निर्माण कर सकेंगे।
0: अभी आपने सुनी हिंदी वार्ता, समाज में बालिकाओं के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वार्ताकार रही दीपिका शर्मा। अब आप पुनः सुने समूह स्वर में देशगान।

आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। समय 9:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल से दिल तक।

सभी श्रोताओं को अंकिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम शुरू हो चुका है दिल से दिल तक। आपके अपने फेसबुक कमेंट्स पर आधारित इस कार्यक्रम में हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ खास कमेंट्स को प्यारे प्यारे गीतों के साथ। कार्यक्रम में बने रहें। कार्यक्रम है दिल से दिल तक।

प्यारे से गीत के बाद अब बारी आ चुकी है आपके कमेंट्स की। कार्यक्रम का पहला कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं श्याम सुंदर माहेश्वरी का। ये कमेंट भेज रहे हैं हमें फारबिसगंज बिहार से। रिश्तों की मधुरता के बारे में इन्होंने बताया है कि पारिवारिक स्नेह जीवन की अनमोल पूंजी है। धन की तुलना में रिश्तों का ज्यादा महत्व हमें रखना चाहिए। रिश्ता वह नहीं जो दिखाया जाता है, रिश्ता वो है जो निभाया जाता है। अलग अलग रूप में पुत्र पुत्री माँ पिता या फिर अन्य किसी रिश्ते को अगर हम पूंजी पर तोलते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। रिश्ते वो हैं जो अनमोल है, इनका कोई मोल नहीं हो सकता, इन्हें हमेशा सवार कर रखना चाहिए। अगला कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं चंडीगढ़ से सतीश और विमला नेजा का। ये कहते हैं कि जीवन एक रेलगाड़ी है। इन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया

है जब हम जीवन जीते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग कुछ पल के लिए होते हैं लेकिन कुछ लोग जीवन भर के लिए होते हैं। जैसे जीवन में रेलगाड़ी का हम उदाहरण लें जो हमेशा चलती रहती है। लोग आते हैं जाते हैं, जिस भी स्टेशन पर रुकते हैं कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ पुराने उतरते हैं। कुछ आपको अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। कुछ थोड़ा साथ देते हैं, कुछ अधिक साथ देते हैं। जहां तक संभव हो हमें सभी के साथ प्रेम का भाव रखना चाहिए। ध्यान रखिए कि कोई भी यात्री अंत में आपका अगर साथ दे रहा है तो वो आपका एक लंबा साथी है। इसलिए किसी से भी इतना मोह ना करें कि जब उसका स्टेशन आ जाए तो हमें दुख हो। कहने का मतलब बस यही है कि जीवन जो है वो एक ऐसा सफर है जो चलता ही चला जाता है। अधिक मोह हमें हमेशा दुख को ही देगा। अगर मोह ज्यादा है तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन बिछोड़ना जो है वो तय है। जैसे हम रेलगाड़ी में जाते हैं और आने वाले जाने वाले आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अगला कमेंट हम पढ़ रहे हैं, रतनमाला सुरलकर, विजय सुरलकर, गौरी सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से। इन्होंने फिलहाल जो गर्मी चल रही है इस गर्मी में कुछ लोग जो सनग्लासेस पहनते हैं, धूप के चश्मे पहनते हैं, उन लोगों को इन्होंने ये कहा है कि सनग्लासेस पहनना आप ये ना समझे कि एक फैशन है। कुछ लोग सनग्लासेस पहनने वालों के लिए भी ऐसा कहते हैं कि ये फैशन में पहना जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी आंखें बहुत नाजुक है और इस धूप से इसे बचाना बहुत जरूरी है। और अगर हम सनग्लासेस पहनते हैं तो बहुत हद तक इनकी सुरक्षा होती है। एक और कमेंट हम ले लेते हैं, नई वाला जिला हनुमानगढ़ से वेद और अलका मिड्डा का। ये बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि अगर हम किसी को अच्छा कहते हैं अपने मुख से तो वो हमारी परवरिश को दर्शाता है, लेकिन अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं अपने मुख से तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी परवरिश को दर्शाता है। तो अपने माता पिता की, अपने परिवार वालों की परवरिश पर ये क्वेश्चन मार्क ना लगाने दें कि आपकी परवरिश में कमी है। इसलिए जब भी मुख से बोलें अच्छा बोलें।

0: को बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं, आइए फिर से चलते हैं आपके कमेंट की तरफ। कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं विष्णु मिस्किन, ऋतिका, वाणी, चंद्रकला।

ला गणेश, काशीनाथ, संगीता, आरोही, प्रियांशी, सोनी और ये सभी हमें भेज रहे हैं अपना कमेंट सोलापुर से। इन्होंने लिखा है कि हम क्यों ना कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें। आइए हम ऐसे इंसान बने जिसकी पहचान उनके कपड़ों या दौलत से नहीं बल्कि उनके अच्छे व्यवहार, साफ दिल और नेक कर्मों से हो। अगर हम एक विचार भी एक पल के लिए ही अपने मन में लाते हैं तो एक सुकून मिलता है। तो सोचिए अगर हम ये बन जाते हैं तो हमारा जीवन कितना सुकून भरा होगा। बहुत अच्छी बात। अगला कमेंट हमें मिला है सांगली से, हनुमंत शिंदे और ऋषिकेश शिंदे का। ये कहते हैं जो दूसरों के जीवन के अंधकार में सुख का प्रकाश पहुंचाते हैं उनका इस संसार से कभी नाश न होगा, वे अमर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो दूसरों की राह में फूल बिछाता है महक तो उसके हाथ में भी रह जाती है। शादुल शहर जिला श्रीगंगानगर से राम कुमार और चंद्रकला रिवार्ड कमेंट हमें भेज रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब घर में ही है। अगर आपके माता पिता आपके घर में हैं और वे खुश हैं, आपके द्वारा दिए गए व्यवहार से वे आनंदित हैं, तो आप ये समझ लें कि संपूर्ण इस सृष्टि पे माने जाने वाले ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी हैं, वो सभी आपसे प्रसन्न हैं। इसलिए कोशिश करें आपके किसी भी कार्य से माता पिता दुखी ना हो। अगला कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। किसी परिचित के अपनी जगह छोड़कर चले जाने पर बहुत दूर यात्रा में जब कभी हम उनसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और उस खुशी का बखान हम शब्दों में नहीं कर पाते। भले ही हम रोज अपने गृह नगर में आमने सामने से निकलने हो, बातचीत की हो, लेकिन अचानक जब वो हमें मिलते हैं, जब अपरिचित जगह पर वो हमें परिचित व्यक्ति मिलता है तो एक बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए परिचय को जितना हो सके हमें बढ़ाना चाहिए। हमारी जो दोस्ताना हमारी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसे हमें हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अगला कमेंट बड़ा ही अच्छा है। राजा नंदवानी ये हमें लिखते हैं कि आजकल देखा जा रहा है कि किसी से भी जान पहचान होते ही शुरुआत होते ही रुपयों की मांग हो जाती है। ये कहां तक सही है? जो आपको पूरी तरह जानता भी नहीं है वो आपको कैसे रुपयों का आपसे लेन देन कर सकता है? रिश्तों की परिभाषा को तार तार न करें, क्योंकि रिश्ते बनते हैं प्रेम और विश्वास से। हम अक्सर यही देखते आ रहे हैं कि हम यही कहते हैं कि प्यार से बोले रिश्ते बनाए, दोस्ती बनाए, लेकिन सच में अगर हम ऐसा थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे ही लोग टकरा जाते हैं जो रिश्तों की आड़ में पैसों की मांग करते हैं, या हो सकता है उनका और कोई स्वार्थ हमारे साथ सिद्ध हो रहा हो। लेकिन हम ऐसे रिश्तों की, ऐसे दोस्तों की जरूरत हमारे जीवन में ना रखें जो इस प्रकार के रिश्ते हमसे बनाना चाहे। याद रखें, हमें एक पल के लिए हो सकता है ये लगे कि ये पैसे देने के बाद रिश्ता मजबूत बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार पैसे दिए उसके बाद लेना या देना दोनों ही बातें शामिल है इसके अंदर, उसके बाद रिश्ते वहीं खत्म हो जाते हैं, इनफैक्ट बिगड़ जाते हैं। इसलिए रिश्तों को हमें बिल्कुल तार तार नहीं करना चाहिए, इसके मोल को समझते हुए पैसों का हिसाब किताब इससे दूर रखना चाहिए।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
1: कौन है वो?

आइए श्रोताओं, आप एक बार फिर से आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। कमेंट हम पहला पढ़ने जा रहे हैं आपका, एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। हर दुख सबक देता है और सबक इंसान को बदल देता है। बहुत छोटी सी लाइन में बहुत गहरी बात है श्रोताओं। अगला कमेंट है सही रामनगर पीथी सर चोरू से, हरि सिंह नायक, चिंकी, पूजा, काव्या, लक्षिता नायक का। क्षमादान सबसे बड़ा दान है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं। ऐसी बातों से, ऐसी हमारे कृत्यों से जिनसे हम कुछ अपने आप को ऊंचा महसूस कर रहे हैं, उसी से प्रकृति खुश होती है और इसी खुशी में हमारी खुशी शामिल होती है। अगला कमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से हमें कमेंट भेजते हैं। ये कह रहे हैं कि दुनिया के मेले में हम सबकी स्थिति एक जैसी है। जैसे एक बच्चा मेले में अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा हुआ होता है तो उसे मेला बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही मेला डरावना बन जाता है अगर उसका हाथ अपने पेरेंट के हाथ से छूट जाता है। ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते भी जब तक हम साथ हैं खूबसूरत होते हैं। अगला कमेंट है पद्मा टॉकीज देपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी, शाका। कहते हैं इज्जत और सम्मान जब आते हैं बहुत मात्रा में आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो तुरंत ही चले जाते हैं। इसलिए इनको हमें संवार कर रखना चाहिए, इन्हें हमेशा बनाए हुए रखना चाहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम दिल से दिल तक का अंतिम गीत आप सुन रहे हैं। अगर आप भी अपने कुछ चुनिंदा विचार साझा करना चाहते हैं सभी साथियों के लिए, तो फिर आप हमें कमेंट जरूर भेजें कार्यक्रम दिल से दिल तक के फेसबुक कमेंट पर।

आपके द्वारा भेजे गए कुछ चुनिंदा कमेंट हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जिन्हें सुनकर समझकर हम अपने जीवन में उतार सके और उतार कर जीवन को बहुत अच्छा और सुखमय बना सके। कार्यक्रम के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम दिल से दिल तक यहीं संपन्न होता है। दे इजाजत अंकिता को।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम दिल से दिल तक। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बजने ही वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे, पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थी। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की दहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल काय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गई, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहाँ जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है, सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुखबुकाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी, हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्या ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई, ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम, बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है, क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्या कक्षा और ब्लैक बोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे, जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ घर

के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम, मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं। इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी

0: मक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम के घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला, वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी, उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं, अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है, 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था, आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूँ। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूँ। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूँ, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूँ। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूँ मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। UPI पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूँ। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह कोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है,

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंत और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई है। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम

कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का। मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हाँ कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहती? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगा कर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दिन में 12 बजे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुरबहार। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज दिन में 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा महिला जगत। चर्चा होगी कैल्शियम की कमी ना होने दें, भोजन में पारंपरिक स्वाद बनाए रखें, इस विषय पर भी बातचीत होगी।

श्रोताओं, आज दिन में 2:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युववाणी के साथ। आज की युववाणी में श्रोता सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइश कार्यक्रम युवा पसंद। चर्चा होगी गर्मी में स्वयं का ख्याल रखें। पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर।

किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 7 बजे। चर्चा होगी किसान कॉल सेंटर पर और कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को लेकर भी चर्चा होगी। बाजार भाव, MSP और मौसम की जानकारी भी किसान भाइयों के साथ साझा की जाएगी।

शाम 7:30 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। लोक संगीत का अगला कार्यक्रम रात 9:15 पर आप सुन पाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप उसको सुनवाएंगे रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती, और 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। FM 100.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू का प्रसारण और श्रोताओं 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट

मनहर और आशा भोसले की आवाज को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम होटल। लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़।

मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज को आप सुन रहे थे फिल्म जान में। श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चोरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कुंज बिहारी के साथ।

Patrick,

सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज़ को आप सुन रहे थे फिल्म जब प्यार किसी से होता है में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।

श्रोता भी सुन रही थी सुखविंदर सिंह की आवाज़ में खिलाफ फिल्म का गाना। इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुरबहार।

उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत, और इस गीत के साथ ही आज का सुरबहार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं सुभाष।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सुभाष चंद्र और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे। विभिन्न आयु वर्ग, क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय समुदाय के सदस्य पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी समुदाय की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल कर रहे हैं। उधर झुंझुनू में आज विधायक राजेंद्र भांबू ने जनगणना टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री भांबू ने कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का काम है। पहले चरण की जनगणना का मूल निवास से कोई संबंध नहीं है। जहां लोग

0: वर्तमान में रह रहे हैं उन्हें वहीं पर जनगणना में शामिल होना चाहिए। उन्होंने लोगों से प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की। इस बीच प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वगणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से इस बीमारी की रोकथाम के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूती से जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वच्छता, सतर्कता और समय पर इलाज को डेंगू से बचाव के प्रभावी उपाय बताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान के निर्माण में सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। हनुमानगढ़ जिले के खेतों में फिर से सफेद सोना यानी नरमा की फसल लहलाएगी। कृषि विभाग ने सीजन के लिए 1,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नरमा बुवाई का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 65,000 हेक्टेयर अधिक है। पिछली बार गुलाबी सूंडी कीट के प्रकोप से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 19 प्रमाणित कंपनियों के बीटी कॉटन बीजों को ही मान्यता दी गई है। और अब मौसम। राज्य में अगले 1-2 दिनों में गर्मी दोबारा से प्रचंड रूप ले सकती है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। इससे हीट वेव का असर फिर देखने को मिल सकता है। वहीं पिछले 2-3 दिनों से कई स्थानों पर जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। कई शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जो सामान्य से कम है। हालांकि उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। उधर फलौदी और चित्तौड़गढ़ में कल अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। उदयपुर और कोटा में दिन भर गर्म हवाओं का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहने और अंधड़ की संभावना है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। वहीं अनेक महिलाएं वट सावित्री का व्रत कर रही हैं। इस अवसर पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इसमें CBSE ने कहा है कि अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र छात्राओं को 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम महिला जगत में हमारी सभी श्रोता बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहनों, आज आपके खास कार्यक्रम महिला जगत में मैं आपके साथ में हूँ अनुराधा। स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

जी बहनों, इस प्यारे से गीत के बाद में फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, हमें पता है कि जैसे हमारे बच्चों की छुट्टियां हो चुकी है या होने वाली है, तो ऐसे में जब बच्चे हमारे घर पे रहते हैं पूरे दिन, क्योंकि वो स्कूल चले जाते हैं तब तो हमें टाइम का नहीं पता चलता है, लेकिन जब वो घर पे रहते हैं तो हमें भी ये रहता है कि अब बच्चे घर पे हैं तो बच्चों को जो खाना हम खिला रहे हैं वो बिल्कुल ताज़ा हो, या जिस समय आप पका रहे हैं उसी समय आप बच्चों को गर्मा गर्म खिला दें। इसके साथ ही बच्चों की भी बहुत ख्वाहिशें होती हैं कि हमें इस समय ये वाला खाना चाहिए, ये ब्रेकफास्ट चाहिए, ये लंच होना चाहिए और शाम के समय हमारा ये वाला खाना होना चाहिए। तो इस तरह से उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन हम उस खाने को अच्छा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते हैं तो हमारा जो भोजन है बिल्कुल पारंपरिक तरीके से स्वादिष्ट भी भोजन बनता है और हमारा जो समय है वो भी बिल्कुल कम लगता है। अब हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत में जो खान पान की परंपरा है बहुत पुरानी है। लोग हमेशा से खाने पीने के बड़े शौकीन रहे हैं और तरह तरह के पकवान बनाना और उनको सजाकर परोसना, यह इतिहास ही पुराना है और यही परंपरा अभी भी चली आ रही है। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम जो भी घर में खाना बना रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट बने और सभी तारीफ करें उसकी, और आप जो भी खाना पका रहे हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पकाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बात करें मसालों को, तो अगर अपने भोजन को हम स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, वो हमें अपनाने होंगे और उसी तरीके से हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बना सकते हैं। अगर मसालों की बात करते हैं बहनों, तो मसालों को ताज़ा भूनकर पीसें और उन्हें सही समय पर डालें। और हम घर में तरह तरह की सब्जियाँ बनाते हैं, जैसे कभी सूखी सब्जी बनाते हैं, कभी ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, तो सूखी सब्जियों में अंत में तड़का लगाएं और धीमी आंच पर पकाएं। लोहे या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करें और प्राकृतिक खट्टेपन के लिए अमचूर या नींबू का ही प्रयोग करें और अन्य चीज का नहीं करें। भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि उनको किस तरह से बनाया जाए। जैसे हम बात कर रहे थे अभी मसालों के बारे में बहनों, तो पैकेट वाले मसाले, पिसे हुए जो मसाले होते हैं, उनकी जगह अगर हम साबुत मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो भोजन और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और जो सूखे मसाले होते हैं उनको हम हल्का सा भूनकर, यानी ड्राई रोस्ट करके इमामदस्ता या किसी भी मिक्सी के जार में आप पीस सकते हैं और उसके बाद में उस मसाले को आप प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो उससे आपका भोजन बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। मसाले डालने का जो क्रम होता है वो भी हमें सही तरीके से अपनाना चाहिए, तब हमारी सब्जी है, हमारा भोजन है, अच्छा बनेगा। जैसे कि धनिया और हल्दी की बात करते हैं, हमेशा इनको धीमी आंच पर पकाना चाहिए और सबसे अंत में, कह सकते हैं अगर हम शुरुआत में अगर इस मसाले को डाल रहे हैं, हल्दी या धनिया को, तो बिल्कुल धीमी आँच होनी चाहिए। अगर हम अंत में डाल रहे हैं तो भी बिल्कुल धीमी आंच पे रख के फिर हमें तेज आंच करनी चाहिए, इससे आपके मसाले का स्वाद भी आएगा और आपका मसाला जलेगा भी नहीं। और पकाने का जो तरीका होता है वो भी बिल्कुल हमें पारंपरिक अपनाना चाहिए, जिससे हमारा भोजन स्वादिष्ट बने। जैसे कि आयुर्वेद और पारंपरिक पाक कला के अनुसार भी भोजन को जितनी धीमी आँच पर पकाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दम देना, और उसका स्वाद और पोषण भी उतना ही होता है। यानी कि अगर हम जितनी धीमी आँच पर पकाएंगे भोजन का स्वाद उतना ही दोगुना होता जाएगा। बर्तनों का चुनाव जब हम करते हैं तो हमें बर्तनों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक नॉनस्टिक बर्तनों की जगह पारंपरिक लोहे की कढ़ाई या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। यह खाने में एक अलग सेंधापन जोड़ता है, या कह सकते हैं कि एक खुशबू अलग से जोड़ देता है, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तेल और तड़के की बात करते हैं बहनों, तो धुएंदार तड़का, यानी कि सूखी सब्जियों या दाल में अंत में घी या पारंपरिक तेल, किसी भी तेल से या घी से हम तड़का लगाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन बात करें अगर हम तेज़ तेल में अगर किसी तड़के को डालते हैं शुरुआत में, तो वो गलत होता है, उसे सिर्फ धुआं ही मिलता है और कुछ भी स्वाद नहीं बढ़ता है। इसलिए किसी दाल वगैरह में या सूखी सब्जी में हम अंत में तड़का लगाते हैं तो तेज़ गरम करके तेल को या घी को, और उसी वक्त तड़का लगा के उस सब्जी में डाल देना चाहिए, जिससे उसकी धुआं है उस सब्जी में ही बनी रहेगी और उस धुआं की खुशबू भी उस सब्जी में आती रहेगी। और उसके खट्टेपन की बात करते हैं सब्जी के, तो टमाटर के अलावा आप जो नींबू है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इमली के गुदे का भी इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में कर सकते हैं। प्राकृतिक मिठास की बात करते हैं बहनों, तो कुछ सब्जियों में जैसे हम लोग कड़ी पत्ता है, हींग है, जीरा है, या उसको तीखापन लाने के लिए हम कुछ और भी जो है जैसे पान मेथी डाल देते हैं, मेथी भी डालते हैं, तो इस तरह का जो संतुलन हमें बना के चलना चाहिए कि कौन सी सब्जी में किस तरह का तड़का लगने वाला है। अब हम बात करें दाल और कंदमूल सब्जियों में,
तो अगर इनमें अजवाइन और हींग का तड़का लगाया जाता है तो ये पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है और आपका स्वाद भी दाल का और जो भी सब्जी है उसका बढ़ा देता है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपने भोजन को

बहनों, हम बात कर रहे थे अपने भोजन के बारे में, तो इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि अगर हमारे भोजन के जरिए या हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या क्या शिकायतें हो सकती है या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। किसी भी मानव शरीर में हम बात करें तो कैल्शियम की बहुत आवश्यक तत्व होता है और यह दांतों, हड्डियों, नसों के साथ शरीर के कई दूसरे अंगों की संरचना और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी कारणवश आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह शरीर में कई अन्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। आपको बता दें बहनों कि कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्शियमिया कैल्शियमिया भी कहते हैं। यह शरीर में कैल्शियम की कमी बढ़ जाती है तो हेल्थ पर इसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। महिलाओं में कैल्शियम की कमी के लक्षण, कैल्शियम की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, इसलिए हम इन्हीं के बारे में आपके सामने बात करने वाले हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी होना कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है बहनों वैसे, लेकिन अक्सर यह दूसरी बीमारियों के तौर पर सामने आ जाता है। अब जैसे हम बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो है हड्डियां कमजोर होना, मांसपेशियों में दर्द होना, दांतों का कमजोर होना, नींद में परेशानी होना, सांस की समस्याएं और गैस या पेट दर्द होना, नाखून टूटना, नसों का खींचना, जोड़ों का दर्द होना या बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना। कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे रिकेट्स, आपने सुना होगा, रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं और इसमें हड्डियाँ बहुत लोचदार यानी कि नरम हो जाती है और उसके टूटने का भी डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेटनी भी आपने नाम सुना होगा बहनों, इस बीमारी में ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाता है और नसों की गतिविधियाँ जो है बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके कारण मांसपेशियों में संकुचन जो होता है वो बढ़ जाता है। और इस बीमारियों में हम कह सकते हैं कि जो आपकी हड्डियां हैं उस पे सबसे ज़्यादा असर होता है, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या आपके जॉइंट में है वो भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, या आपके पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा सूजन या लालिमा बनी रहती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कैल्शियम की कमी से हो सकती है। तो अब बहनों बात ये आती है कि जब आपको पता चल चुका है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले इसमें नाम आता है चिया सीड्स का। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए चिया सीड्स एक बेहतरीन सोर्स है। आपको बता दें कि 2 बड़े चम्मच में 179 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, इससे हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हेल्दी होती है। अंजीर की बात करें बहनों तो कैल्शियम के लिए अंजीर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप 7 से 8 अंजीर दिन में खा लेते हैं सुबह तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। टोफू, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, टोफू सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत भी है। ब्रोकली, अगर हम सब्जियों में बात करते हैं सबसे हेल्दी सब्जी की, तो इसका नाम सबसे पहले आता है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसमें विटामिन और कैल्शियम सही मात्रा में पाया जाता है। आप शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ब्रोकली को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संतरा की। संतरा हर कोई पसंद करता है खाने में, तो संतरा एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी नहीं बल्कि कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में फैट सोल्यूबल विटामिन पाया जाता है जो कैल्शियम को शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है, और संतरा में फाइबर भी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें बहनों तो आपको दही, दूध, मक्खन, पनीर इन सब का सेवन करना चाहिए और 1 गिलास दूध आपको रोज सेवन करना चाहिए। सी फूड्स भी आप इसमें ले सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कैल्शियम की जो शिकायत है आप में नहीं रहेगी, और फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी बहनों, हम अगर बात करते हैं कुदरत की, तो कुदरत का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गर्मी किस तरह से बढ़ रही है और इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम हरियाली अपने पास आसपास रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कोशिश ये करें अपने पानी की जो बचत करें। कुछ लोगों की जैसे आदत होती है कि पानी को व्यर्थ ही बहाते रहते हैं या व्यर्थ में ही पेड़ कटवा रहे हैं या पेड़ नहीं भी लगाते हैं, तो ये भी कुदरत का अपमान ही होता है। अगर हम जैसे प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति केवल हमारे आसपास का परिवेश नहीं होता, बल्कि वह हमारा पूरा अस्तित्व होता है, क्योंकि उसी में हम समाये हुए हैं, उसकी वजह से ही हम चल रहे हैं। हम प्रकृति हमारे बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह से हम भी अपनी प्रकृति की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अगर हमारी प्रकृति स्वस्थ है।

हमारा आसपास का वातावरण अच्छा होता है तो। और ये सुरक्षा हमेशा तभी महसूस होगी जब हम प्रकृति को स्वस्थ रखेंगे। लेकिन जो आधुनिकता है उसकी दौड़ में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। समझना ये ज़रूरी है बहनों कि हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है कि जहाँ पे हम जाके रहने लगे, तो हमें इसी को ही सुरक्षित और स्वस्थ बनाना है। हमारे पास हमारी पृथ्वी है जिसे आगे की पीढ़ी को और बेहतर बनाकर हमें उन्हें सौंपना है और यही हमारी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है और उन्होंने अपने घर की पूरी तरह से प्रकृति सम्मत बना लिया है, जैसे कि सोलर बिजली युक्त घर, बायोगैस का इस्तेमाल, घर में उगाई गई सब्जियां और वर्षा जल संचयन से पृथ्वी को कम से कम तकलीफ होने की जो है जुगत उन्होंने लगा ली है। और कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे उपाय निकाल लिए हैं जिससे कि पृथ्वी की जो हरी भरी धरा है हमारी, उसको हम बचा सकते हैं, अपने वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही हम अपनी प्रकृति को, अपने वातावरण को ठीक बनाए रख सकते हैं। अब हम भूल जाते हैं, लेकिन ये बातें हमें याद भी है और फिर भी हम उसे याद नहीं करना चाहते। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारा जल है तो हम सुरक्षित हैं, हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। धरती पर पीने योग्य जो जल है वो सीमित है, हम सभी इस बात को जानते हैं। उपयोग न होने पर भी नल बंद करके और नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी और मग का उपयोग करके हम प्रतिदिन एक व्यक्ति जो है 50 लीटर तक पानी बचा सकता है। ये बिल्कुल छोटी सी बात है कहने के लिए, लेकिन जब हम इसको सोचते हैं या इसको अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात साबित हो सकती है। जैसे रिश्ता हुआ नल होता है कुछ घरों में, उसे हम ठीक कराकर जो 20 लीटर पानी है एक दिन का वो बचा सकते हैं। अगर हम जैसे पानी पीने के लिए जो गिलास का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ये आदत होती है कि कोई भी मेहमान आता है हम बड़ा सा गिलास पानी का भर के उनके सामने रख देते हैं, लेकिन वो आधा ही पी पाता है या थोड़ा बहुत पानी पी के छोड़ देते हैं, तो ऐसे में वो पानी खराब जाता है। तो कोशिश ये करें हमारे जो बड़े गिलास हैं उसे ना काम में लेकर हम घर में ऐसे छोटे गिलास रखें जिसमें सिर्फ उतना ही पानी भरा जाए जितना हम पी सकते हैं एक बार में। और इसी तरह से खाना बनाते समय कम से कम बर्तनों का इस्तेमाल करें जिससे बर्तन धोने के लिए ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो। गाड़ी धोते समय भी हम पानी की बचत कर सकते हैं कि पाइप से जो है वो गाड़ी ना धोकर अपने जो बाल्टी मग है उसको लेकर और बाल्टी में पानी भर के मग से आप धोएंगे तो बहुत सारा पानी बच सकता है। इसी तरह से हम अपनी प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा की खपत भी रोक सकते हैं। धीरे धीरे हम छोटी छोटी बातों को अपनाकर, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाकर ऊर्जा की खपत भी रोक सकते हैं। और हरियाली, हरियाली की जब हम बात करते हैं तो पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम ये कर्तव्य पूरा करने के बाद भूल भी जाते हैं कि उन्हें, हमें देखरेख भी उनकी करनी है और वो बड़े होने तक, फलीभूत होने तक उसका हमें ध्यान भी रखना है। तो हरियाली सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं तभी पनपेगी जब हम उसका ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी तो निभा देते हैं कि हमने इतने पेड़ लगाए, गिनती में गिन लेते हैं, लेकिन वो सुरक्षित कितने हैं और उनका ध्यान हमने कितनों का रखा है ये भूल जाते हैं। और अब बात करते हैं आपके घर के कचरे की। हमारी ये आदत बनी रहती है कि हम जो कचरा है सुबह शाम जाके आसपास कहीं डाल के आ जाते हैं, तो ये आदत हमें बदलनी ही होगी, क्योंकि जो आपका कचरा है आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कचरा आसपास डालते हैं तो वही बीमारी और वही गंदगी आपके पास पलट के ज़रूर आएगी। तो कोशिश करें आप कचरे को इस तरह से फेंकें या इस तरह जो भी आपकी गाड़ी वगैरह आती है कचरे वाली उसमें डालें जिससे आपके आसपास गंदगी ना बने और आप बीमार ना हों। इसके साथ ही जो बारिश का जल होता है उसके संचयन की व्यवस्था भी आप बनाए रखें और एकल उपयोग प्लास्टिक का भी त्याग करें। जैसे कि हम सब्जियां खरीदने जा रहे हैं, राशन लेने जाते हैं, तो हम घर से कोई भी थैला या बैग नहीं लेके जाते हैं, तो ये बहुत गलत आदत होती है। अगर हम बैग नहीं लेके जा रहे हैं घर से तो हम प्लास्टिक की थैलियों में सामान लेके आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए कोशिश करें जब भी आप सामान खरीदने जाएँ घर से बना हुआ कपड़े का बैग लेकर जाएँ। हम बहुत सारे बदलाव चाहते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं जिससे गर्मी कम हो जाए, हमारे आसपास हरियाली हो जाए, हमारी बिजली की बचत हो जाए, पानी की बचत हो जाए, लेकिन ये सारी शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। यदि हम अपनी इन छोटी छोटी आदतों को सुधार लें और अपना जो वातावरण है वो सुरक्षित तो करेंगे ही, साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक बहुत सुंदर
और जो कह सकते हैं प्रकृति, जो जो वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अपने बच्चे को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कम से कम हम धन संपत्ति ना दें, लेकिन एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण अगर हम देके जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहे हैं। और इस जिम्मेदारी के लिए हमें

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जी बहनों, जब गर्मियों में भोजन करते हैं आप लोग या आपके परिवार के सदस्य जब खाना खाते हैं, तो उसके साथ में अगर रायता और होता है तो वो खाना और भी मज़ेदार और स्वादिष्ट लगता है। और रायता बनाने के लिए हम बात करते हैं तो अगर लौकी का रायता जब आप बनाते हैं तो वो और भी

स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। इसको बनाने का हम तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें इसके लिए चाहिए आपको 300 मिलीग्राम दही और किसी हुई जो लौकी होती है उसको आप कद्दूकस कर सकते हैं जैसे लौकी को, या बिल्कुल बारीक भी काट सकते हैं। 1/4 कप जो होती है वो लौकी आप ले सकते हैं। टमाटर इसमें आप 1 ले सकते हैं कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ होना चाहिए। और प्याज 1 प्याज ले सकते हैं आप इसमें, और 1/4 कप कटा हुआ जो लहसुन है, कह सकते हैं कि अगर आप इतनी दही ले रहे हैं पूरे परिवार के लिए रायता बना रहे हैं तो लहसुन अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप डालते हैं तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। कटी हुई जो अदरक होती है वो आपको लेनी है, हरी मिर्च 1 कटी हुई ले सकते हैं, और हींग चुटकी भर, तेल और घी जिसका आपको तड़का लगाना चाहें आप वो चीज़ ले सकते हैं, और जो कड़ी पत्ते हैं वो 4-5, और राई और जीरा थोड़ा सा तड़के के लिए आप ये ज़रूर लें, और जो हल्दी पाउडर है वो 1/4 चम्मच यानी 1/4 चम्मच आप ले सकते हैं, और नमक जो होता है वो आपके स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं जो लाल मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ में जो गरम मसाला है वो आप लें 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच ले सकते हैं, और हरा धनिया ऊपर से सजाने के लिए। इसको बनाने का तरीका बहनों बहुत ही आसान है। कढ़ाई में घी या जो तेल आप ले रहे हैं उसे गरम करें, उसमें सबसे पहले राई और जीरा तड़काएं, फिर हींग डालें और इसमें लहसुन प्याज और अदरक को भूरा होने तक पकाएं। इसके बाद में जो हरी मिर्च आपने कटी हुई ली थी वो, और उसके साथ में टमाटर और कड़ी पत्ते, साबुत जो लाल मिर्च आपने ली है वो, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर थोड़ी देर पकाएंगे, और नमक और गरम मसाला मिलाकर लौकी डालें और इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। 2 मिनट पकाने के बाद में आप गैस बंद कर देंगे। जो आपका तड़का अगर ठंडा हो जाता है उसके बाद में आप फ्रिज में रखी हुई ठंडी दही अगर इसमें डालते हैं तो ये रायता बहुत स्वादिष्ट बनता है, और बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता है।

0: जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
0: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री GUDC और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। मुख्य उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने

0: मलेशिया के नूरिजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 2:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

जहर फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी आतिफ असलम की आवाज़ में। श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के चोरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने अपने रेडियो दोस्त कुंज बिहारी के

शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में श्रोता इस समय सुन रहे थे तराना फिल्म का गाना। ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी की चूरू केंद्र से। आपके रेडियो सेट पर अब सौतन फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज लता मंगेशकर की। गीत के बोल सावन कुमार के, संगीत उषा खन्ना का।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: श्रोता इस समय सुन रही है आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम तराने नए पुराने।

सुरेश वाडेकर की आवाज को आप सुन रहे थे फिल्म सनी में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू का प्रसारण। कार्यक्रम संबंधी सूचना भी आपको दे दें, अब से कुछ ही देर बाद दिन में 3 बजे से आप सुनेंगे, माफ कीजिएगा, आपके फोन कॉल हम रिकॉर्ड करेंगे कार्यक्रम हेलो चूरू के लिए 3 बजे से 3:30 बजे तक। और हमारे फोन नंबर है 01562253644, 01562253644।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम युवाणी में। शुरू हो चुका है ओनली ऑन 100.7 एफएम पर। और आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे आपकी रेडियो दोस्त कोमल दैया को,
1: और साथ में होगी आपकी रेडियो साथी शालिनी। तो युवाणी सुनने वाले तमाम श्रोता साथियों को हमारा
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है युवा पसंद, जिसमें आपकी फरमाइश जो किए हुए गाने हैं वो हमारे रेडियो सेट से 100.7 FM से प्ले किए जाते हैं, जिसमें अभी आप जो गाना सुन रहे हैं वो है फिल्म अमर अकबर एंथनी से, और इसकी फरमाइश की है डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर दीबा ने चमन पार्क दिल्ली से।
1: जी दोस्तों, और साथ ही इसी गाने की फरमाइश जो है वो हमें करते हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबू।

0: चंद्रनगर कॉलोनी से, और साथ ही डोडी लोहारा से शंकर देव जाटोलिया और तुषार जाटोलिया
1: जी। और साथ ही इसी गाने की फरमाइश हमें करते हैं जेल रोड शिमला से प्रमिला अशोक जाटव, प्रभा रानी और संदीप श्याम जाटव।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
3: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
3: वो भी जांच कर।
4: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है युवा पसंद, जिसमें आपकी जो फरमाइश किए हुए गाने हैं वो हमारे रेडियो सेट से प्ले किए जाते हैं, जिसमें अभी आप सुनेंगे फरमाइश फिल्म आप तो ऐसे न थे से। जो फरमाइश की है वो है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम युवाणी। सेगमेंट चल रहा है युवा पसंद, जिसमें आपकी पसंद जो है वो अपने रेडियो सेट के जरिए आपको सुनवा रहे हैं। और इसी में जो अगली फरमाइश है वो हमें मिलती है फिल्म तराजू से, और पसंद करने वाले हैं वीरमगाम सिटी से उस्मान वोहरा, सहनाज वोहरा। राजकोट गुजरात से हमें लिखते हैं सुखदेव जाटव, प्रभा जाटव, तुषार जाटव और राकेश जाटव।
6: जी, और साथ ही ईमेल किया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ईमेल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है युवा पसंद, जिसमें अगली फरमाइश हम सुनेंगे फिल्म आशा से। और इसकी फरमाइश की है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने अंबाला हरियाणा से। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आपका शुक्रिया। आइए सुनते हैं इनकी प्यारी सी फरमाइश।

0: जी दोस्तों, खास सेगमेंट युवा पसंद में अब आपको सुनवाते हैं अगली पसंद। फिल्म टू स्टेट से ये गाना पसंद किया गया है और पसंद करने वाले हैं जेल रोड रायगढ़ से उमा रानी अजनबी, बेबी जोई, डोली बेलदार, छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी, चंद्रनगर महाराष्ट्र से आशा जाटोलिया, देवशंकर जाटोलिया।
1: जी, और इसी के साथ पसंद किया है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप।

जी दोस्तों, युवा पसंद सेगमेंट में अगली फरमाइश हम सुनेंगे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, और ये ईमेल हमें लिख के भेजा है सुधाकर राजे जाधव ने। डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और संचित वायल, प्रथमेश देशमुख और प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी देशमुख ने जाफराबाद से। प्रोग्राम में ईमेल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए

0: जी दोस्तों, खास सेगमेंट युवा पसंद में अब आपको लिए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश जो है वो हमें लिखते हैं फिल्म डुप्लीकेट से, और ये हमें लिखते हैं जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।
1: जी, और साथ ही ईमेल किया है कमल किशोर, माया, पूजा, प्रेम, तमन्ना और चंद्र प्रकाश ने गायत्री नगर चूरू से। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं इनकी प्यारी सी फरमाइश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है युवा पसंद, जिसमें अभी हम सुनेंगे फिल्म साजन से फरमाइश की है रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां ने जलन

जी दोस्तों, खास सेगमेंट युवा पसंद में अब हम गाना सुनवाएंगे आपको फिल्म दिल से। और इस गाने की जो फरमाइश है वो हमें करते हैं सहारनपुर से आंसू डोकर, कस्बा गुरनौर से नसीमुल इस्लाम गुरनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुरनौरी। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइशी गीत।

0: जी दोस्तों, ये तो था आज का हमारा खास सेगमेंट युवा पसंद, जिसमें ढेर सारी फरमाइशी जो गीत है वो आपने हमें भेजे, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए आप भी हमें हर शनिवार खास सेगमेंट युवा पसंद में ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा
1: youthexpresschuru@gmail.com। फिलहाल जो है प्रोग्राम से जाने की इजाज़त दे को मलदैया को
0: और शालिनी को
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 110.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार बुलेटिन श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से शाम 6:10।

शाम 6:20 पर श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे शाम 6:30 पर। 6:40 पर सुनिए जिले की चिट्ठी का प्रसारण। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे शाम 6:45 पर। ये समाचार प्रसारण श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर अजमेर।

शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में होंगी चर्चाएं, लोकगीत एवं लोक भजन, राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:30 पर। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज एट 9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। ये समाचार अंक आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिए रात्रि 9:15 पर।

चित्र भारती श्रोता कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात्रि 10:00। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11:00। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से प्रसारित करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:00 वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया,

0: युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नीदरलैंड के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का

ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति फिल्म की गीत।

हिंदुस्तान की कसम। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी उदित नारायण, जसविंदर नरूला और साथियों की। गीत लिखा था आनंद बक्सी ने, संगीतकार थे सुखविंदर सिंह। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म का गीत श्रोताओं अभी आपने सुना सोनू निगम और मनमोहन वारिस की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार ए आर रहमान। इस देशभक्ति गीत के साथ कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी चूरू से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देश भर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने AI और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को PM श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो iStart के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर

0: काम कर रहे हैं अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है
1: पहले कोरोना आया फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि इस पर 51 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय आधारभूत रचना कोष बनाया जाएगा श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा साथ ही प्रदेश के 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है उनके फोटोग्राफ डाले हैं उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं थाना है उनकी भी सूची और नंबर
0: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है
3: नृत्य से संबंधित संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन गायन और पियानो है इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं इसी तरह से कथक नृत्य राजस्थानी फोक डांसेस इनका समावेश किया गया है साहित्यिक में स्टोरी ट्रीज इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन कहानी वाचन सीख सकें लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए
0: और अब मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा

0: रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौड़ ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है। ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि

0: लोकपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है, हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावण रो काम शुरू हुयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो, हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश रा घणखर हलका में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 रा तहत प्रदेश में आज मकाना री लिस्ट बनावण रो काम शुरू फेक्यो। 14 जून ताई चलन वाला ई काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावण में काम ली री जी सामग्री और मौजूद सुविधा रा बारा में 33 सवाल पूछ रिया है। भीलवाड़ा जिला में ई काम सारू 4163 प्रगणक लगाईचिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज कीनी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रिया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा रा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणे री बोटनी री शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार कीनी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त कीनी ही। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच ही। सीबीआई रे मुजब वा 14 मई ने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवारा ने वारा पुणे रा घर माए खास कोचिंग दीनी। ई मामला में हाल ताई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी चिया है। काल गिरफ्तार करी चिया 2 आरोपिता ने पुणे री अदालत सामी पेश करी चिया, जठों वाने अदालत दिल्ली भेज दीना। लाला 24 घंटा माई सीबीआई न्यारी न्यारी ठोड़ाऊं कई आपत्तिजनक कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त कीना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हलका माए खुद रे पाण उबो हेवणो ही देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रिया हा। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नी है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावण सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हलका माए काम आवन वाला साजो सामान दिसावर उ मंगावण री बजाय देश माई बनार खुद रे पाण उबो वेवण ओड़ी तेजी उ बढ़ रियो है।
2: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
1: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल में बनने मौके 18 महीने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरूजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बतायो कि लारला 2.5 साल में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊं इनरी देश में खास ओळखाण बनी है। इन खास कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर रा भामाशाह टेक्नो हब रो दौरो कर स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियां कानियों करिया जा रहा तकनीकी नवाचारा री जानकारी लीनी। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हलका माए स्टार्टअप्स री कोशिशां देखी हरवानी सराहना कीनी। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित भणाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलों जोड़बा माथे जोर दीनो।
3: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफ़ी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और सामोकरण सारू भरोसेमंद, साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन रे बारा माय मिलर काम कर रहा है। वे 5 देशां रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माय भारतीय समुदाय रा लोगों ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी वेवन री सूरत माए दुनिया रा विकास माथे असर पड़बा सागे मोटी आबादी रे गरीबी री ओर बढ़वा री शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी माए भारत मौका री धरती बैन अर सामी आयो है जो तकनीक और इंसानी मूल्यों रा आधार आगे बढ़ रियो है।
4: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में रखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि इन काम माथे 51 करोड़ रुपये बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो कि बजट में करी जा ऐलान रे मुजब स्कूलों में बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2,000 करोड़ रुपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनायो चावेला। श्री पटेल बतायो कि करीब 400 स्कूलों ने सीएम राइज स्कूलों रा तौर विकसित करी चावेला और 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली चावेला। सैलानिया री हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषावां माए काम करण वालो ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वे बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानिया ने सुरक्षित गेलना रे जानकारी सत्यापित गाइडा रे लिस्ट हर मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।

0: तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज़्यादा है। उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी इस ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प मांग सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं। इसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
1: जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हुआ। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग के शासन सचिव सुचि त्यागी इनरो उद्घाटन किनो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।
2: नृत्य से संबंधित, संगीत संबंधित जो गतिविधियां हैं जिसमें बांसुरी वादन, गायन और पियानो है, इसमें बच्चे गिटार भी सीख सकते हैं। इसी तरह से कथक नृत्य, राजस्थानी फोक डांसेस, इनका समावेश किया गया है। साहित्यिक हुई स्टोरी ट्रीज, इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे बच्चे कहानी लेखन, कहानी वाचन सीख सके। लगभग 550 से 600 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं। एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हैं और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: अरब मौसम प्रदेश का घनखर हल्का माए जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा माए फलौदी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब 19 ठोड़ रहे हो। महकमा के मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनखर हल्का माए पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इस दौरान उगनी रातुनी हल्का माए तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगण की संभावना है। इस बीच 18 मई आतुनी और उत्तराध हल्का माए जोरदार बायरो बाजण की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम रखी गया। झुंझुनू माए ANM ट्रेनिंग सेंटर री टावरिया री ओरों जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी रही। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा कर्मचारियों की ओर मच्छर मारण सारो जतन करी जिया और जनता ने जानकारी दी रही जी। करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा माथा चलाया जा रहा अभियान रा तहत शहरी और गांवी हलका में डेमो, पोस्टर, पंपलेट और सोशल मीडिया के जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य में आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू हुयो। नीट UG 2026 पेपर लीक मामला में CBI आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करया जावेला। और प्रदेश रा घनखर हलका में जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार,
3: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
4: कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।

0: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे हैं?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रहिमन दागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाला सगले किसान भाई बहना ने लाडी श्रोता ने टाबरा ने बड़े बुजुर्ग ने सैन भाई राजकुमार का निशु
2: और मोहन भाई का निशु
1: मोकला
2: मोकला राम राम।
1: तो मोहन भाई देखो के मौसम को मिजाज यहाँ लो रे रे के बेरुगुन पड़े कदे तो तकड़ो तावड़ो पड़े। तो अगर सप लियो सिर पर नहीं हुए यार खेत जाने को काम पड़ जाए या दिन का जल्दी उड़ गया यार सब ली सके को ले गया तो देखो बहुत तगड़ो तावड़ लगे
2: बिल्कुल।
1: और एक सागे सागे अब गड़ा अन्नी चके को कोई भरोसा को नहीं कदा आगे खड़ी जा
2: बिल्कुल।
1: और अब देखो के ऊपरली पड़े आगी बजट को मिनो लाग गयो तो अब आपने खरीफ फसलों को बाई तक आगे टेम हो लाग गयो। अब जी हाँ नरमो है वो तो क्या किसान भाई बादियो मूंगफली है नरमो है और एक सागे सागे देखो के जो की चरी है बाबी बादी तो बिग मायने सिंचाई कर सके। एक सागे सागे देखो के पहले तो क्या हो तो के चौमा साल एक फसल ले लिया करता।
2: अच्छा
1: अब पहले क्या किसान संतोषी प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा होया करतो के सोमन बाजरी होती और बैठे बैठे क्या है राबड़ी रोटी सागे रोटी खा लेते।
2: अच्छा।
1: अब भाई बंटवारे में जमीन बंट गई अब जोत का कार घट गया
2: थोड़ी थोड़ी जगह पानती
1: हो तो एक कमाइन की है का एक फसल लेना नाको कौन लगे एक सागे सागे सिंचाई का साधन भी बढ़े तो दो फसल ले लागे यार। अब वो बीज को जो खालब को तीन चार मिनट टेम है इम जायद वाली फसल भी ले वाला गया तो जायद वाली फसल में यह है कि गर्मी बहुत तकड़ी पड़े तावड़ा बहुत तकड़ा पड़े तो सिंचाई करनी बहुत जरूरी है और सिंचाई का भी नया नया तरीका का एक तो बूंद बूंद सिंचाई से किया गया बेला की जड़िया का माइन पानी देना।
2: अच्छा।
1: जिससे किया गया बेला ऐसी गहरी रहे और पंख ज्यादा ज्यादा फल लगे। एक सागे सागे आप खरीफ की फसलों की पूर्व तैयारी करा तो खेत का मायने आपने जकी घर खाद तैयार कर रखी आप देसी खाद तो बा खाद खेत का मायने गेरा और गेरनी पर्याप्त को बिन खिंडानी भी बहुत जरूरी है।
2: अच्छा।
1: कई किसान भाई देखो के करे के लोडरू सीधो ट्रैक्टर का मायने ट्राली का मायने खाद भरी जा खाद भरवा दी खेत का मायने बो के है गए ट्रैक्टर है जो बिन खाद ने एक जगह गेरिया सी और बह संभाले गुन बह संभाले कद के बिरखा उच्चा जत। अब भी टेम के वह गए खाद का ऊपर ली जगह बिजड़ी तो कोई भी काम की कोनी खाद के नीचे की जगह रहेगी बस सूखी रहेगी और फिर वह खाद खिंडा हुए।
2: तो देखो मैं ये भी देखियो थे खाद की बात करी के घर ही कोई कुणे का मैंने एक जगह गोबर भेड़ो करता जा बटे गिरता जा और पचा बठू में कोई गाड़ा में एक ट्रॉली में गिलवा के सीधी खेत का मैं ले जाए टेक दी। अब इन जगह खाद

तैयार कर रेडी है भाई। एक तो पूरी तैयारी कोनी, पूरी तरीके में तैयारी कोनी हुई। अब गोबर पूरी तरीके न तो सड़ियो न गलियो, एकदम से खाद तैयार कोनी हुई, तो भी सकी है के बा भी सब फसल बढ़ने

0: तो अपन की अगर खाद पूरी तरीके से तैयार हो रही खेत में गेरनी है, और गेर के और पी के बाद में भी अच्छी तरीके से खिंडा के और गर्मी की पाड़ करवाओ। गर्मी की पाड़ कराने का बहुत फायदा है क्या है, एक तो जहाँ जमीन का मायने जुखा लट रहे और हुए ने तो वह तावड़े का संपर्क मारना खत्म हो जा, तो वह अगली फसल में सीधे को नहीं
1: जगह फसल ने नुकसान पहुंचा,
0: हाँ वह कीट है जगह नष्ट हो जाएगी उसे। और दूसरी बात क्या, जमीन को जाड़ो टूट जा पाड़ करवाने से क्या हुआ क्या, अब आप जी मान लो रबी की फसल आगे मायने सिंचाई करी है फुहारा से करें ज्यादातर, तो भी सकी अगर जमीन है जो पानी की छाप लाग लाग लाग लाग पक्की पड़ जा तो भी को जाड़ो टूटना बहुत जरूरी है। और भी को जाड़ो टूटने के लिए देखो बढ़िया है भी की पाड़ करवा दे आप,
1: नरम हो जाए थोड़ी,
0: हाँ नरम हो जाए तो भी कमाइन बीज भी बढ़िया तरीके से उगेगो। और फिर एक बात और है क्या, पाड़ करने से खरपतवार है ना भी कम हुआ।
1: तो खेती बाड़ी जी थे बता रहे पुराने टाइम में संतोषी यार बाजरे की रोटी रावड़ी के साथ काम चला लेता, पर अब खेती के मायने खूब नवाचार हो रहे जी, पहली जगह डर्रो चाल तो भी सब बदल गयो, थोड़ो और ज्यादा दो कदम आगे बढ़ गया, जमीना कम जरूर हुई है पर उत्पादन है वो भी के साथ बढ़ गई है और गुणवत्ता पर भी आज अगला बहुत ज्यादा ध्यान देव लगा। और पिछले दिनों में जब रसायन खूब काम में लियो भी में भी देखो आज दिनों में कमी आई है, जगह लोग खरीद रहे हैं वे भी आजकल जागरूक हो गया, वे भी इस चीज को ध्यान रख लगा, पहले पूछ के लेगा कि भाई दवाइयाँ तो कौन दी है खेत का मायने, जैविक तरीके उन तैयार करिए तो बिना भाव चोखा दे और बिना ग्राहक भी ज्यादा मिले, तो खेती भी अब लाभ को सौदा हो और छोटी जगह का मायने ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, किसान भाई खूब आजकल इस चीज की जानकारी लेकर बढ़िया तरीके खेती बाड़ी कर रहे हैं, खूब नवाचार हो रहा है जगह फसल आप लेन लाग रहे हैं, उन्नत किस्म का बीज ले क्या हुआ है, खूब सारी तकनीका आ गई, जगह काम बोला बोला दिन लाग जीता करने में 10-10, 15-15 दिन मनो मनो लाग जीता, बे काम आज एक दिन में हो जाए 5-4 घंटा का मायने हो जाए।
0: तो देखो क्या कोई भी काम है वो टाइम जित पेड़ो रतो ने जद भी कमाई नहीं होया करती, ऊंट से जद अड़वाया करता, जद अड़सोट करने एक आदमी आगे बहुत हो बोसिनिया काट ले तो खेपड़ी काट ले तो कोई के लिया जिया उना सुना बदरे है तो बांगी छांगन कर ले तो, अब देखो कि मैं हो जाने जना हर आदमी आ रहे है जल्दी से जल्दी मैं खेत बो, और यह मान लियो कि 2-3 दिन के अंदर अंदर तो पूरी रोई है जगी बिजान हो जाए, तो बिग मायने अपा अत आत को नहीं कि भाई ट्रैक्टर ने खेत में बुला के बिग बाद में कह दिया अब मैं अड़सोट कर सू, तो कोई भी काम करना है कोई अड़सोट करना है कोई केलिया की छांगन करनी है कोई सिवा सपाटा का मायने कोई छड़ी काटनी है तो वो काम किए कि पहली से अपन करेड़ो रखना पड़सी, या खाद खरीदानी है तो वो काम भी पहली करेड़ो रखना पड़सी, अड़सोट पहली करेड़ो रखना पड़सी। और आजकल देखो कै ट्रैक्टर भी इतना नवाचार आ गया कै भी कमाइने थे बाजरो जिया जितो गेरण चाहो बीघा के हिसाब तो मशीन का मायने फिट कर दो बीतो बाजरो ही पड़सी, और धान जितो गेरण चाहो तो बीघे हिसाब से मशीना काम करे लगी। और एक सग सग देखो कै आ मशीना का मायने इतनी मतलब नई नई तकनीक आई है कै पहली कहता कै भाई बा जमीन तो बाई जाएगा नहीं बा जमीन भी बाई चला गई ट्रैक्टर भी यहाँ मान लियो का पड़ाला चढ़ा लग गया, तो अपन समय के साथ चालना है एक साथ साथ आप खाद की बात करी ने तो बिया किसान भाई देखो जाना ही है कज की केच वाली खाद है जकिन वर्मी कंपोस्ट आप कवा तो भी को प्रचलन भी बहुत हो क्यों कपा के है कि केचुओ भी खाद ने खा और खाद ने खा के और वो खाद पैदा करे
1: अच्छा।
0: तो भी कमाइन कोई प्रकार की कोई और चीज तो भी कमा रहे ही सिर्फ खाद ही रही और वह खाद भी बड़ी लाभकारी है
1: अच्छा।
0: अब एक मायने ध्यान रखने वाली बात आ है कभी एक तो किया का केचुए की खाद आप अपना जना जठा तेज धूप हुए बीजा को नहीं बन सके बीजा यहाँ को नहीं बन सकेगा आजकल तो टेम्परेचर आ रही है जना केचुए की मृत्यु जा तो छायादार स्थान होना चीज है एक सागे सागे एक बात और है कि भाई खाद बनावा तो भी कमाई ने नमी है जिकी बनाई होनी चीज है।

0: सही बात है भाई। आ केचुआ खाद की जिकी बात करी हो, अब देखो भी यहाँ भी पहाड़ करवाने लाग रहे किसान भाई, तो अबारे की खाद की ज्यादा जरूरत है, बनाने की विधि है जिकी भी ज्यादा कोई कल्टी को नहीं, अपना किसान भाई ये जगह आपके खुद के खेत में तैयार कर सके, बाहर से खरीद के लेना रीसी कोई चीज गुंज खरीद के बाहरों लेके आनी पड़े, खुद तैयार कर सके इन्हें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी। हाँ थे बता रहे सब पहले तो इसी की जगह ढूंढा जड़ा ज्यादा धूप नहीं हो और
1: तावड़ो नहीं आवे।
0: हवादार जगह होगा, फिर भी कमाई ने देखो 2 मीटर लंबो और 1 मीटर चौड़ो एक खड़ मेड बना के तैयार कर लेवा, भी कमाई ने जब आप केचुआ छोड़ा भी से पहली सब पहली 6 इंच की एक परत तैयार करा, जी कमाई ने सड़ो गड़ो गोबर होवे ने भी की एक परत बिछा दिया पड़े, और भी में थोड़ी उपजाऊ माटी हो जाएगी कोई पेड़ के नीचे की माटी हो बा लेके आ जाओ, और बा लेके भी कमाई ने बिछा दी, बिछाने के बाद में वह परत तैयार होगी, भी परत का मायने बाद में आपा केचुआ छोड़ा सम पहले तो 40 केचुआ प्रति वर्ग फुट के हिसाब से आपा भी कमाई छोड़ सका, इस हिसाब से केचुआ छोड़ना है ठीक है। एक परत तैयार होगी भी के बाद में आपा दूसरी परत की बात करा, पहली परत तैयार करके भी मैं केचुआ छोड़ दिया भी के बाद में दूसरी की बात करा, तो जी हाँ घर का मायने कोई रसोई है सब्जी वगैरह बनावा तो भी का जगह अवशेष बच्चा जगह भी का छिलका हुआ इसी कोई चीज हो है, भी की दूसरी परत भी के ऊपर बिछा दी 8 से 10 इंच मोटी ठीक
1: और
0: है।
1: केचुआ ने वापस
0: भी के बाद में बात करा आप आग लगी आग लपड़ाव की, तो भी के मायने जगह आप दूसरी परत बिछा दी, भी के ऊपर सूखा पत्ता है गोबर है इसी चीज बिछा दी, अब बात रही नमी की तो नमी अपन बना के रखनी है, तो जब भी आप कोई भी परत बिछा रहे हैं तो भी के ऊपर एक बार पानी को जो छिड़को है वो देता रहो, अंत के मायने के करनो आपने 3 से 4 इंच मोटी दोबारा गोबर जो सड़ियों गड़ो गोबर है जो आपा शुरू तैयार करियो, भी की एक परत और बिछा के पानी को छांटो देगी और बिन कोई चीज से ढक के छोड़ दे, ढकनो ही लिए चाहिए कि अंधेरो रवन है तो जगह केचुआ है बांको आवागमन है जो ज्यादा तेजी से रहो, चाड़नो रवे तो चाड़ने के मायने बे क्या है कि ज्यादा आला डूली कौन करे जल्दी तैयार कौन हो, तो बिन ढक देवन है तो जल्दी खाद तैयार हो जाए बिन ढक के छोड़ देवा, और भी मैं नहीं नमी बनाई डी रखा देखांगा तो आपा 50 से 60 दिन का महीना अपनी खाद जगी बन के तैयार हो जाओ, और भी के बाद में आपा भी ने काम में ले सका
1: भाई। देखो एक मायने ऊपर से ढकने की जरूरत तो यहाँ पड़े कि तेज धूप केंचुआ सहन कुछ कर सके। एक की है कि खाद का मायने की है कि केंचुआ भी खाद ने पूरी तरीके खानो चीज है, जहाँ पर रसोई को जो किचन वेस्ट है वो ये बात से डाला कि वो किचन वेस्ट है जो केंचुआ ने आमंत्रित कराया खाने के लिए, और फिर बा खाद है जिसकी एकदम काली या मान लियो कि चाय पत्ती जिसी बा खाद तैयार हो जावे भी कमाइन कोई प्रकार की दुर्गंध को इंद्रव है और खेत के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो केचुआ ही खाद है जिसकी आपने खेत में घेरनी चीज है। और अब देखो चर्चा तो आप और भी कर चा पर प्यों पहली एक लोक रचना सुन लिया तो सीमा मिश्रा और साथ गाइडी सुनवा।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भर।
1: हाँ तो देखो, अभी आप एक मीठी सी लोक रचना सुनी सीमा मिश्रा और साथिया की आवाज में, और राजकुमार भाई बात करा आप वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद की, और खाद के बनाने की विधि भी बताई कि लाभ हो क्या, किसान भाई काम में ले सकर क्या बना सके, भी बात पर चर्चा करी आप खूब। सागई देखो, खेती बाड़ी की बात चल रही है और नित नई समस्या भी आवे, जहाँ नवाचार चल रहे बढ़िया खेती बाड़ी कर रहे हैं पर बीच बीच में दिक्कतें भी आवे, सब कुछ एकदम सही होने के बाद भी बहुत बार फसल की जो कि बढ़वार है आपा सोचा भी हिसाब से को नहीं हो,
2: फसल की बढ़वार को नहीं हुआ है, कई बार आप भी हुआ है का बढ़वार तो अच्छी जा पर भी का बढ़िया फली कौन लगे, बढ़िया सीटों को नहीं आवे, बढ़िया दाना कौन पड़े, एक सागे सागे फसल को जो प्राकृतिक रंग है वो नहीं रहे।
1: अच्छा,
2: तो भी ये मानना चाहिए कि ये फसल में कोई न कोई रोग लग गया।
1: रोग लग गया तो इसी समस्या भी आपने सामने बहुत बार आई खड़ी हो जावे, तो आप जी बात चीता करता रहा, किसाना ने बताता रहा चौपाल में बैठ के, पर भी अलावा भी किसान भाई के कद भी दिक्कत आ जावे हर टाइम आप सागे बन रहा, और भी जगह से अनुभवी किसान है वह भी बात करे फिर भी नहीं बैठे, तो एक सरकार जो की और बढ़िया चीज चला रखी किसान कॉल सेंटर जी का नंबर बता दू मैं किसान भाई ने, 1800-1801551। तो ये जगह नंबर है, ये साल में 365 दिन और हफ्ता में 7 दिन, दिन के 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक चालू रहे,
2: और आ नंबर पर एक सुविधा और है।
1: अच्छा,
2: अपनी भाषा में बात कर सका, कोई जरूरी को नहीं भाई आप इंग्लिश आनी जरूरी है कि हिंदी आनी जरूरी है, आप अपनी भाषा का मायने बात कर सा तो विशेषज्ञ है जो अपनी भाषा में बात कर सी।
1: बिल्कुल, तो देखो किसान भाई के खेती बाड़ी से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, कोई रेशम पालन करे, कोई मुर्गी पालन करे, कोई मधुमक्खी पालन करे, कोई पशुपालन करे, या कोई उद्यानिकी फल जगह लगावे, कोई सब्जी उगा रही है, या कोई फूलों की खेती कर रही है, या फिर एक अलावा जगह आप खेती करा खरीफ और रबी की फसल की बहुत संबंधित, कोई भी दिक्कत हो रोग से संबंधित हो, बढ़वार को नहीं होने लग रही, जहाँ थे बता रहा हो कि जो फसल को प्राकृतिक रंग होना चाहिए विषय भी नहीं हो रही हो आपने की भी शंका लग रही है, तो 1800-1801551 पर आपा फोन करके जो भी आपनी समस्या आपने बतावांगा वे आपने इगो समाधान बतावेगा, और देखो कितनी फायदे की बात आपने किसान भाई के लिए कि किसे पूछने की जरूरत को नहीं, की कोई इंतजार करने की जरूरत को नहीं, जब भी दिक्कत

0: ताई आपा सीधा फोन करके अपनी समस्या को जो समाधान है वो पास का।
1: और एक बात और है कि वो टोल फ्री नंबर है, आपने फोन करने को कोई शुल्क को नहीं।
0: अच्छा।
1: और एक सागे सागे जिया मान लियो आप फोन करियो और बे टाइम आपने फोन रिसीव को नहीं हो तो बे किसान कॉल सेंटर वाला आपने अपन करेगा चला आगे बे।
0: अच्छा।
1: क्या बोलो भाई थारी की समस्या है
0: भाई, कई बार आप फोन करा पे फोन नहीं उठा पावे तो पछे पे चला गयो तो फोन करा अपन।
1: हाँ
0: देखो अभी कितनी बढ़िया बात है के आपनो कई बार फोन नहीं उठा पाया तो भी आपनो ऑटो फोन करे और फोन करके आपन से समस्या पूछर भी को समाधान बतावे, बहुत बढ़िया जानकारी।
1: और एक सके देखो एक बात और है के जानकारी देने वाला भी मतलब पहली की है प्रारंभिक स्तर पर जानकारी देसी।
0: अच्छा।
1: तो वह जानकारी देसी बीस अगर आप संतुष्ट हो गया तो ठीक है, और बीस संतुष्ट नहीं हो गया तो बस से भी मतलब ऊपर का जगह विशेषज्ञ है बस से बात करवा सी।
0: अच्छा।
1: अब बात है कि आपा फोन पर जानकारी ले जा तो बिक मैंने देखो पूरी आपने के बीमारी है फसल के मतलब कीट लाग गयो ओढ़ लाग गयो तो बात तो अपन पूरी बतानी पड़ी और बाप पूरी बता सकना कि अगर समाधान भी अपन पूरा मिल सी तो ई योजना को अपन फायदो है जो लेनो चीज है।
0: बिल्कुल। ई खेती बाड़ी के काम से अलावा अगर किसाना के या कृषि से संबंधित योजना भी चल रही बहुत सारी, बाकी अभी आपने जानकारी नहीं है कोई हल्की पुल्की बात आपने करना पड़गी गई सीसी योजना चल रही है और अपन पत्तो आज को नहीं कि क्या आपा भी हम आवेदन करा भी को के लाभ और क्या मिलना चाहिए तो आप बा जानकारी भी वहां से ले सका। और अबार की टाइम किसाना के लिए बहुत सारी योजना चल रही है, चाहे किसान के खुद के लिए बात करा तो बा के लिए चल रही है, फसलों के लिए बीमा फसल चल रही है, सिंचाई के लिए चल रही है, पशुपालन के लिए चल रही है, तो हर चीज के लिए बहुत सारी योजना चल रही है। आपसे संबंधित भी जानकारी लेनो चाहो तो आ नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सका।
1: भाई आ तो बहुत बढ़िया बात है कि भी अब देखो कि खेती का मायने खर्चा बढ़ गया, अब बिजाई करा तो भी टाइम बीज लाने की चिंता बाद में की है कि फसल है तो फसल का मायने भाई खराब हो जा तो भी के लिए फसल बीमा भी तो आ योजना को अपन की जानकारी लेनी चीज है और लेके फायदो उठानो चीज है।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो चर्चा तो और भी करता अपने गणिती जज दे तो आज वो कार्यक्रम बस अठी ताणी फेर मिलने ताणी राजकुमार भाई
0: और मोहन भाई ने
1: सीख दियो करा
0: राम
1: राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं सीमा मिश्रा और साथियों को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस अंतराल से पहले श्रोता सुन रहे थे सुपीरिया की आवाज में गाई राजस्थानी लोक रचना। श्रोताओं, इस लोक रचना के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आपने इंदिवर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे श्याम सुंदर। फिल्म मासुख आवाजें कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आकाशवाणी के चूरू केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम।

श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म यादों का मौसम से ये गीत, आवाज अनुराधा पोडवाल की थी। गीतकार थे सलाउद्दीन परवेज, संगीतकार आनंद मिलंद। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, ओनली ऑन 100.9।

दिल है तुम्हारा। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार थे नदीम श्रवण। प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला

श्रोता अभी सुन रहे थे दीवाना फिल्म का गीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार थे नदीम श्रवण। आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं।

उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की है आवाजें। गीतकार समीर, संगीतकार हिम।

फिल्म तेरे नाम के इस गीत के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित

0: भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3

0: भाषाओं में से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा दसवीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के पश्चात श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत, आज के लोक कलाकार पप्पू मस्ताना और साथी।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे पप्पू मस्ताना और साथियों को। ये आकाशवाणी के चूरू केंद्र का प्रसारण है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम।

आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी

मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 M.V. रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म A.V. मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहाँ जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म S.M. श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था।
2: दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है।
1: इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
0: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी। दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, I love you।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कुचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजू का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता के अभिनय वाली फिल्म फर्ज़

फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नाकाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं, और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा।

0: धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक, मेरे पास माँ है।
2: मेरे पास माँ है।
1: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटनीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती है।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपनी बेटी से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: और माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो?
2: विजय।

0: बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
1: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक,
2: तुम के

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD2।
2: जब जब मुझे पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहरा।
0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
3: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।

0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को

0: योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चली गई। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश। दरा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
1: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं, क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो एल बी लक्ष्मण जी ने खरीद लिया और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नयन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: ओहो,
1: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
0: जी।
1: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा, और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा। इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: में हम आपको सुनाएंगे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। पंडित कैवल्य कुमार गुरव सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ पंडित संगमेश्वर गुरव के सुपुत्र है। उन्होंने अपने संगीत की शुरुआत 15 वर्ष की आयु में मराठी नाट्य संगीत से किया। इसके उपरांत उन्होंने ख्याल गायकी के ओर रुख किया और अपने पिता एवं गुरु पंडित संगमेश्वर गुरु के मार्गदर्शन तथा वर्षों की कठिन एवं निरंतर साधना

मुलाकात दे रहे हैं। पंडित कैवल्य कुमार गुरु अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग दुर्गा से कर रहे हैं। इसमें तीन रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल, रस कानारे, ध्रुत एक ताल

0: तोरे पिया से, उसके बाद द्रुत तीन ताल चतुर सुगर। आइए सुनते हैं राग दुर्गा।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित जडेश हुगार एंड ऑन द हारमोनियम बाय डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी। पंडित कैवल्य कुमार गुरव बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद राग दुर्गा। रूपक ताल रस कान्हारे, द्रुत एक ताल लागी लगना तोरे पियासी, द्रुत तीन ताल

0: अब तक आप सुन रहे थे राग दुर्गा। पंडित कैवल्य कुमार गौरव जी अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग आभोगी। इसमें दो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तिल ताल आ रंगीला आ।
1: That was राग दुर्गा। Now you will listen to राग अभोगी। रूपक ताल ले हो तुम, ध्रुत तिल ताल आ रंगीला।

अब तक आप सुन रहे थे राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब संपन्न होता है, जिसमें आप सुन रहे थे पंडित कैवल्य कुमार गुरव का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित जडेश हुगार और हारमोनियम पर डॉक्टर सुधांशु कुलकर्णी साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों

0: में तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन तीन भाषाओं में से कम दो भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर तीन कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing

0: In IPL cricket, chasing a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177-1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245-2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब आज की हमारी है सायंकालीन प्रसारण सभा यही समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।